0: बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दाङ में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोग का बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महीना को दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
1: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 0825166494। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98578303145, 98478303153 र 98649944।

राम राम मैगर कविला हाँ हार्दिक स्वागत बा थारू भाषा के कार्यक्रम अपना का आवाज में पकपी मई बाटू अपना माज में उपस्थित हो सैकल बाटू शालिकराम चौधरी उसका महीना प्राविधिक रूप में सात दीदी बाला विष्णु अधिकारी पकपी आज हम उपस्थित हो सैकल बाटे हमारा अपना आवाज लेखन यह समय में बिहार का दिन हम दुई बजे का मध्य पश्चिम हाइलाइट पास करीब करीब हम तीन बजे समय रहना करती वह अनुरूप आज उपस्थित हो सैकल बाटी पकपी अपना आवाज अपना को कार्यक्रम हो अपन प्रतिभा सुनिरा कार्यक्रम हो अपना को गीत गजल कविता जैसुकी प्रतिभा जहोस रेडियो में सुनिरा लायक अपन प्रतिभा अपना उग्र सुनाई सकने बाटी अगर कलाक अपना उग्र 082-568-54 नंबर डायल करना आई पर्ना होता अपना उग्र इन नंबर डायल करना आई बी कला से पक्के अपन प्रतिभा सुनाई सकने बाटी रमाइलो गपगाफी होने बा नगर के बिलाव कर अपना उग्र रेडियो मध्य पश्चिम इंटरनेट के पहुंच बाटी कला से www.radio.org लगइन कहना सुन फेस सकने बाटी उसका हम पात्रो मोबाइल एप्लीकेशन में से फे अपना उग्र रेडियो मध्य पश्चिम सुन सकने बाटी हमारा अपना का आवाज रेडियो मध्य पश्चिम की फेसबुक में से फिर हमारा लाइव करल बाटी अपना उग्र रेडियो मध्य पश्चिम नेपाली में टाइप कर भी कल से पक्के वहां से अपना उग्र भेटिने बाटी सुन सकने बाटी वहां से फिर ध्यूर माध्यम बा अपना उग्र जहां से सहज उठा वहां से अपना उग्र सुनकर साथ दिविकना आशा फिलहाल बाटी ई कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपना उग्र अपन प्रतिभा धर सिक्ने बाटी हमारा अपना उग्र को प्रतिभा कदर करती दांसी पुरस्कार के व्यवस्थापक रखी अपना उग्र प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जहां जीवन चौधरी वहां का प्रतिनिधि हुई वहां का तर्फ से अपना उग्र एक कार्टून पानी की व्यवस्था कैदे रखल उसका 100 रूपये रिचार्ज कार्ड फिर अपना उग्र प्राप्त करने बाटी अपना उग्र 082-568-854 डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक सुगर गिदर छाटू अपना उग्र डायल करती करी 082-568-854

0: पक्कपि सुग्घर गीत बस्ती रह सुन्नु सजना कन्या बोलके आवाज पक्कपि अत्र बेला आफ्नो हुन्छ सुन्टी बाटी रिडी मध्यपश्चिम एकानब्बे बुधा चार मेगाहर्जको आफ्नो आवाज सुन्टी बाटी उमेश मुस्कान औ अनु चौधरी केशोर मरलक अत्र बेला आफ्नो माझमा गीत धेरै अत्र बेला क्युसँग हाम्रो सम्पर्कमा आशाकलबाट उहाँलाई स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
1: हलवा खेलना दिन आ गल माटी से खेलना महीना आ गल हमरे ते समय वाला मनई परली हजूर फरवा कन्नम भोग के खुलवा करना दिन आ गल फरवा कन्नम भोग के खुलवा करना दिन आ गल हजूर राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोलिए
1: पुराने समय देवघर के रूपराज चौधरी
0: देवघर से रूपराज चौधरी ना
1: हजूर
0: रूपराज जी
1: हजुर
0: कहाँबाटी घुराइतिए सब ठिक बा आप खेतीपातीकै दिन थियो आप आइटा खा परल गाउँ देखर त अलिक हलि खेतीपाती सुरु भइसकेको हुन उहाँ पानी फे अलि र बोरिङ बोरिङ मसिन छ
1: पानी लग पानी के नै कलम कैन मनै बिया दर्शन सेकले
0: बता ए ठीक बा कार्यक्रम सम्झल बाटी आस्था सुन इतिहास
1: अब देवखर के सीजन अनुसार आजकल सजना सीजन हो सर
0: हजुर
1: सुना
0: शुरू करी
1: कहाँ बोले

0: তিলাওয়াতর বলি এইসু হামুন লাগে তালাওয়াই বলে অনাস কুরিলে রে নাজিরে বলি খাধর বনম বলে বনকে মুরিলাওয়াতর বলি এইসু হামুন লাগে আরে বনম বলে বনকে মুরিলাওয়াতর বলি এইসু হামুন লাগে
1: सुगर सजना रह एकदम धन्यवाद बापनिकला ठीक बा कार्यक्रम में सुगर सजना फिर गादेली ऐना दिन बस समझ टिकारबी छुट्ट निश्चय अगारी हम अब एक हम सुगर गीत बजीने बाटी के समझ
0: सर्वप्रथम अपना
1: धन्यवाद
0: फोन उठा के सात बेला खमारे चिन्ना
1: राम राम उहाँ रूपराज चौधरी देवखरी सङ्गरिया होइट हाल चाहिँ कामके सिलसिलामा यहाँ दाङहोर बाट फुर्सेकालीहोर बाटो के के कटल अब अपने पाला 082-568-54 नम्बर डायल के केना सिक्ने बाटी पक्कै आफ्नो प्रतिभा धर सिक्ने बाटी गीत कैजन ठिकलस गीत धर सिक्ने बाटी उसँग गजल कविता ज्या आफ्नो प्रतिभा सुनाइ सिक्ने बाटी आइसिक्छु 082-568-854 नम्बर डायल के कन तर आज चाहिँ प्राविधिक र महिना सात देतीबाट शान्त कुमार बुढामकर अत्र बेला महिना सात देतीबाट अत्र बेला कि सङ्ग्रहमा सम्पर्कमा नि रहेछ पुगे आइसक्ने बाटी 082-568-854 नम्बर डायल गरिकन अत्र बेला एक ठो फेरि सुगर गीत दर्शाटी गीत पाछ आफ्नो माझमा उपस्थित हुने बाटी।

0: मैगर कवि लहाक हसन सुगर गीत बस्ती बस्ती फेर क्यू संग हम संपर्क में सकल बाटी ढील निकन वहां स्वागत करदा रही। हेलो राम राम
1: राम राम राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोली?
1: अरे कर्जा से बैरागी छित्रु चौधरी।
0: छित्रु चौधरी ना?
1: हजुर।
0: फिर बैरागी फिर थपली का
1: बैरागी तो आजकल तो हवा हुरी चलता बैरागी दिन हवा अब आगी पानी से बचना दिन आजकल बहुत होशियार होना दिन हो क्या वो तो बैरागी तो कदी का हूँ
0: हो ना उस दिन बैराग हो के नी बैठ भी बांचसम खुशी ले बसना नहीं था बाँचसम्म त कहाँ बैराग हो के बेच्न र छिटी जिन्दगी न फेर खुसी हो कि बस्न नि त
1: बस्न त ठिकली बाँचे कक्षा बस्न हो पचास सत्र सत्र वर्ष जागिर खागिर दो सौ सोह्र सत्र वर्ष सिर्किम पकिला खुइटर गिल अब कहाँसम्म बस्न आएको छु आफ्नो जिन्दगी एक छ दिगदार हो रहनु
0: नै सन्तुष्टि त हुई परल नि त आफ्नो जिन्दगी सन्तुष्टि त कबुफे नि होइन त मनिन के स्वभावै हो तर फेरि ज्यादा सन्तुष्टि हुई पर्था कना हो
1: ऊ त ठिक गली अब नै सुझाव मजा हो
0: एक ठो इच्छा पुरा से और इच्छा के उचा लथा नि त इफे हुने र भजन मजा हुने र यी हुई त मलाई सब कुछ पुगल कना उठा फेरि ऊ पुरा हुला से और चिज के आवश्यकता के महसुस हुठा नि त ना
1: से तो अपने उक्रेन साथी बना रख गप गप करती एक दूसरे जन लग गिदी थी हंसती बोलती चलती तो वहाँ मन चंचल हुई था
0: धन से हुई से फिर एक ठो चित्त बुझीना एक ठो वो संग बनाई पर था वो
1: हो
0: रेडियो मध्य पश्चिम कलक अपने एक ठो संगरिया बन रहा
1: संगरिया बन रहा मध्य पश्चिम रेडियो मध्य पश्चिम सकुन कार्य मध्य पश्चिम हो यही से वो लक्षा के लिए फोन कर सकना माध्यम बन रहा का
0: सबको जान आग्रह फिर कर हाटी औजानी संग्रहण फिर
1: औजान फिर वो सुनारी सुनने को लगा कि वही इसे जानकारी कराई खोज
0: रेडियो मध्य पश्चिम में से प्रसारित हुई ना एक कठोर केल थारू भाषा के कार्यक्रम तो यह कार्यक्रम केल तो होनी है ना
1: हो
0: वो फिर आप दांग कलक तो थारू जातिन के बाहुल्य
1: तारो बसवास
0: कलक दांग हो है ना
1: हो हो हो
0: ठीक बा अस्त अस्त गप तो करती नहीं कर भी आज का सुने इतिहास
1: छिटी एक ठोजी सुना दी ढेर गाँव कोई डाली और जाने से अटकाई थी फोन लगाई थी तो वहाँ व्यस्त व्यस्त गा थी नी
0: लसुरु करी
1: साली हो कफार कफार कोर खे कफार कोर खे अंत जिंदगी हो मही छोर खे साली हो कफार कोर खे कफार कोर खे अंत जिंदगी हो मही छोर खे लिया तो गाँव
0: अत्रा ना छिटफे मिटफे न छिटफे र मिटफे रह
1: क्या गप फेरकै डल्ली अब जान फेर कार्यक्रम गए पाल आदमी को छु क्या
0: ल हुइठा अस्त अस्त कस्त सम्झौती गरी ऐना दिन में फे छुट्टी का हूँ राम राम
1: राम राम ली
0: राम राम उहाँ रह छिटपु चौधरी कर्जाई से समझल रह वहाँ नियमित कविला फिर भी हमारा लगभग नियमित रूप में समझ ऐना दिन में फिर अंक समझी करबी अत्र बेला क्यू संग हम संपर्क में ऐना प्रयास करती अत्र बेला प्राविधिक रूप में महीना सात देती शांत कुमार बुढ़ा मगर महीना सात देती आई सकने बाटी 082-5764-6959 नंबर दाग लिखना अत्र बेला क्यू संग हम संपर्क में सैकल बाट स्वागत करदारी। हेलो राम राम
2: राम राम राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोलिए अमर चौधरी ना अमर जी के हाल खबर का बा
2: ठीक है भाई कार्यक्रम सुन
0: ना आजकल तो भेटघाट नहीं तो बिजी बाटे का
2: कब कब जिन तक भेटघाट
0: ना ठीक बा कार्यक्रम समझल बाटे और तो ठीक बा ना
2: हाँ सब मजा बात नहीं सुना
0: ठीक है बा यार फिर बताओ ठीक बा कार्यक्रम समझल बाटे आज का सुनाई थी
2: एक ठो सजना सुनाउ कपर
0: सुरु करी
2: किनकि त्यहाँ सुनाएको ठाउँ कसैले थाहा मजा मान्दिन न ए मुख्य कथा

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक। यति बेला दिउँसोको 3 बजेको छ।

0: एक्सचेन्ज डेट यही डेट 3 गते देखि 8 गते सम्म ग्रेन एक्सचेन्ज मेला हुने स्थान दाङ निर्माण व्यवसायी संघको प्राङ्गणमा डीके पेट्रोल पम्पको ठिक उत्तर तर्फ घुराई 15 दान।
1: एक्सचेन्ज गर्न आउँदा बिल बुक अनिवार्य लिएर आउनुहोला। थप जानकारीका लागि राप्ती अटो इन्जिनियरिङ बजाज शोरूम शहीद गेट घोराही दाङ। सम्पर्क फोन 082562423। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98578301 98478333 र 98686342044।
2: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू अब दाङ मध्य पश्चिम पोलिक्लिनिक घोराईमा।
3: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू
2: वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण हरि सुवेदीद्वारा दैनिक बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
3: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपमा शर्माद्वारा दैनिक चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
4: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट MBBS MD डाक्टर रामेश्वर देवकोटाद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा।
3: नोट, अत्याधुनिक सेवा सहित 500 MA को डिजिटल एक्सरे सेवा र औषधि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
2: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
3: सम्पर्क दाङ

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर में शालिकराम चौधरी का हार्दिक स्वागत बा। दाङको घोराई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल। वैशाख 26 गते हुलक निर्वाचन ओ 27 गतेको अन्तिम नतिजा से निर्वाचित ध्रुव केसी नेतृत्व हुन आज एक कार्यक्रमको बीच निवर्तमान कार्य समिति पद हस्तान्तरण गर्लक हो। निर्वाचन समितिको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रेवती रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा हुलक कार्यक्रममा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित ध्रुव केसी से काल जेठ 1 गते से लागू हिनाकीकरण 160 रूपियाँ न्यूनतम 8,000 लिटर पानी देतेलकमा यहाँ 10,000 लिटर बनिना कोराही नगर हन स्वच्छ धर फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर हरेक उपभोक्ता हन हाते झोला वितरण गर्न वा प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी अन्ना घोषणा कै रखल। पद हस्तान्तरण कार्यक्रम नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको नक्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत रेवती रमण भट्टराई ओ सदस्य निर्मल गौतम से प्रमाणपत्र वितरण करल रह कलश कार्यक्रमको सहजीकरण निर्वाचन कमिटिका सदस्य भूप बहादुर केसी करल रह। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विद्यालय खेलकुदको सकुरिनसे भारी प्रतियोगिताको रूपमा रलक 16 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता यही जेठ 1 गते से 3 गतेसम्म दाङमा सञ्चालन हुन हरहल। प्रतियोगिताको सक्कु तयारी अन्तिम चरणमा पुगलक आयोजक जना राखल। प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीको आयोजनामा हुई लगलग प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्ला से करिब 1,200 बढ़ी खेलाड़ी सहभागी हुनेबाट खेल सञ्चालनका लागि 150 जना रेफ्री परिचालन कर्जिना सदस्य सचिव तिरन्दाज गौतम जानकारी दिएर प्रतियोगितामा एथलेटिक्स भलिबल कबड्डी लगायत 6 विधामा प्रतिस्पर्धा हुन बटवागिल बा। प्रदेश भरक खेल उत्कृष्ट खेलाड़ी बीच प्रतिस्पर्धा हुन हुल घोषित प्रतियोगिता धेर महत्वका साथ हेरगिल बा। प्रतियोगिताको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गर्न कार्यक्रम तय गरिगिल बा। प्रतियोगिता मार्फत विद्यालय तहको खेलाड़ीको प्रतिभा उजागर गर्ती राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाड़ी उत्पादनमा सहयोग पुग्न विश्वास आयोजकले राखल। दाङमा भारी संख्यामा खेलाड़ी प्रशिक्षकको खेल प्रेमीको उपस्थिति से खेलकुदमय वातावरण बन्न अपेक्षा गरिगिल बा। राप्ती गाउँपालिकामा जेठ 1 गते से राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह शुरू हुन रहल। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको निर्देशन तथा गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार स्वच्छ स्वस्थ ओ व्यवस्थित वातावरण निर्माण गर्न उद्देश्य सहित सप्ताहव्यापी अभियान सञ्चालन गर लागिलक हो। जेठ 1 गते से 7 गतेसम्म सञ्चालन हुन उक्त अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल सड़क विद्यालय स्वास्थ्य संस्था ओ बजार क्षेत्रमा सरसफाई फोहोर व्यवस्थापन प्लास्टिक न्यूनीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बा। गाउँपालिका से टोल विकास संस्था विभिन्न संघ संस्था सुरक्षा निकाय शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजको सहकारीमा अभियान प्रभावकारी बनिन जनागिल बा। अभियानको औपचारिक शुभारम्भ जेठ 1 गते से बिहान 7 बजे गाउँपालिकाको परिसरमा गरिने बा। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सरसफाई अभियान सफल बनाएकाला सक्कु सरकारवाला हुन सक्रिय रूपमा सहभागी हुई आग्रह गरिरहल। उहाँले सरसफाई दैनिक जीवन शैलीको रूपमा अपनिति स्वच्छ ओ समृद्धि राप्ती निर्माणमा सक्कुको साझा प्रयास आवश्यक रलक बटुवा राख्ल। स्वास्थ्य मन्त्रालयले से देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान आफ्नो स्वामित्वमा रहेक जग्गा जमीन ओ भौतिक पूर्वाधार सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल निर्देशन दिराखल। मन्त्रालयले एकरकलाक परिपत्र जो जारी गरिकन अतिक्रमण हुलक जग्गाका लगत फे माग राखल। मन्त्रालयले आफ्नो जग्गाको साथ सीमाना स्वीकृत नक्सा अनुसार हुलक निहुलक यकिन गरिकन जग्गामा कौन अनाधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण हुलक निहुलक विस्तृत विवरण तयार पार कराखल। हुलक पागिरसले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थान निश्चित समय सीमा तोक्कन लिखित सूचना जारी गर सूचनाको पालन निहुलक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पालिका तथा सुरक्षा निकायसे समन्वय गरिकन अतिक्रमण हटिना ओ अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्न व्यवस्था मिलाइफे मन्त्रालय निर्देशन दिए राखल। भविष्यमा फेर अतिक्रमण हुने देखला अतिक्रमण मुक्त धर्गिलको खाली जग्गामा घेराबार गर ओ आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाइना फे निर्देशन दिगिल्बा। मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी लालपूर्जा ओ श्रेष्ठता अध्यावधिक गर मालपो तथा नापी कार्यालयसे प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित धरफे कैराखल।
ओ सरकार से वास्तविक सुकुम्बासी हन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा अर्थात लाल पूर्जा वितरण निकरसम अस्थायी व्यवस्थापन कलाक मासिक 15,000 रूपया घर भाड़ा उपलब्ध करीन तैयारी कैराखल। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधि कनकला असिन जानकारी करैलक समिति सभापति हरि ढकाल जानकारी दिएरख वहाँको अनुसार घर भाड़ा दिन कामकलाक स्रोत सुनिश्चित होसेकलक जानकारी प्राप्त हरहल। अखि काठमाडौँको विभिन्न होलिङ सेन्टरमा विरलक भूमि हुकनकला पहिचानकलाक स्क्रीनिङ हुइतिरहल बा प्रक्रिया ओराइल लगत फास्ट ट्र्याक लाल पूर्जा वितरण गर्न सरकारको लक्ष्य बाटिन। गुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर उनसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाही टू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: काठमाडौँ डायबिटिज एन्ड थाइराइड सेन्टर जावलाखेल ललितपुरमा कार्यरत मधुमेह थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप चन्द्र श्रेष्ठ घोराही 15 सडक विभाग रोड स्थित दिव्य फार्मेसीमा आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै नाम दर्ता गराई स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्।
2: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू
1: सुगर रोग सम्बन्धी उपचार
2: हर्मोन सम्बन्धी समस्याको उपचार
1: लामो समयदेखि